tailing down here. A circle surrounding you. जिसने ए मन मंग ली है उसदिया सारिया मंगा पूरी और कड़ी मंग नानक को ब्रह्म मया कर सच देव क्योंकि सच सदा रहने वाली है दूर दिखुटे नानका दूर में हो गया पूरे पदार्थ पहले भी नहीं रहे तो इस वास्ते मामिल पूर्ण दिखुटे नाम का और अंदर सच और सिर दी अर्थात पातशाह मैं सच्ची वस्तु जरा सच नाल जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान को दुनिया सबका आधे रस्ते चंगे रस्ते पे सच्चे मार्ग पे कर्म वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले भजन परमावे सच्चे मार्ग चल देना उस तत्व करे सच जरा सच पे आप बोलते वो दुध पे आप जरा झूठ पे आप बोलता है वो जहर पे आप सच बोलने जेडा पुन कोई नहीं झूठ बोलने जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना दे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराई वो नाम केड़ा है वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हमें वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हमें उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा वह नाम भी अंब और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है वह नाम भी अंब और सानू केड़ा अंब चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा नहीं फिर उसकी राखी करनी पैदी संभाल करनी पै फिर सामू जोड़ा अब फल है वह प्राप्त इसे तरह उस वाहगुरु की प्राप्ति का साधन ये वाहगुरु शब्द वाहगुरु गुरु मंत्र है जब हम ये गुरु का मंत्र बाबा ईसर सिंह जी महाराज वचन करते सन भाई ये गुरुमंत्र जो वाहगुरु है ये दरगाही टिकट दुनिया भी सफर करना होने ता भी टिकट की जरूरत टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता और इसे तरह उस दरगाह जाने वास्ते मार्ग तक पहुंचने वास्ते प्लीज सानू टिकट चाहिए एक दिन रस्ती रस्ती दुनिया में छड़ के पुत्र धियां त्याग के किसी लंबे पेड़े इंसान ने पाए किसी ने पूछा मारे ऐ धन गुरु अर्जुन देव बादशाह पहला दसो भाई जिस रस्ते पे एक दिन इंसान भी तुर रहे हैं मारा पहला दसो कितने वीर सब बॉम्बे जाना मीलों का पता
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਭ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਮਾਉਂਦੇ

हरी का काम दरगाह ही टिकट गुरमंत्र की टिकट तेरे को होगी तो यह गुरमंत्र तेरू उस गुरु उस वाहिगुरु की पहचान करा हर का नाम तय नाल पहचान जै महाभयान तपत कर अगर कहते उस रस्ते जिथे बड़ा ओपरा जहा रस्ता है उथे और गर्मी भी पड़े आम कहते गर्म इतने गर्मी हो गई असं कई ओपरा नहीं कर तो उस गर्मी को बचने वास्ते ना कोई और कोई साधक इको साधक जय मां ध्यान तपत को धाम तय हर के नाम।

से पाऊं जो तेरे रंग रात से स्वामी दिन का जन्म मर दुख नासा तेरी बख्श ना मिटे कोई सतगुरु का दिलासा जिसने

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, सानू अपने ना पवित्र वचना के द्वारा ये दस रहे हैं कि साड़ी जीवन की यात्रा जो है वो सफल क्यों नहीं हो रही, उसके विच ऑब्स्टैकल्स की हैं। साडे जीवन की जो विधि है वो किस किस्म की है, तो आओ गुरु बाबा जी के चरणों के विचों पूछिए, महाराज असी अपने जीवन की यात्रा किवें सफल कर सकते हैं, असी अपनी जिंदगी नूं किवें रंगीन बना सकते हैं। तो बाबा जी आखते हैं कि तुहानूं तीन चीजा मिलियां, नंबर एक बॉडी माइंड एंड सोल, जो उस दिन शब्द दे विच दास ने अर्ज कीती सी। तो सब तो पहला ओ तन नूं, शरीर नूं जो पॉइंट आउट करते हैं, कहते हैं असी देखते हाँ कि ये जो शरीर सी एक वहीकल सी, एक साधन सी, जिस साधन दे नाल, जिस वहीकल दे नाल तुसी अपनी यात्रा जो है उसनू तय करना सी, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बॉडी, जड़ी अजीवात्मा इस दे विच ड्राइवर की तरह बैठा हो। बाबा जी आखते हैं किसी भी यात्रा ते सक्सेसफुली पहुंचने दे वास्ते जो उसका वहीकल है उसका परफेक्ट कंडीशन दे विच होना एब्सोल्यूटली लाजमी है। जे वहीकल बिगड़िया होया है, जे वहीकल रिलायबल नहीं है, तो वो यात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। महाराज जी साडे वहीकल नूं की होया, वट इज रोंग विद अवर वहीकल? वो आखते हैं इत्थे बस नहीं, जदों किसे ने किसे वहीकल दे विच अपनी यात्रा करनी होवे तो उसनू अपने वहीकल दा ए टू जी पूरा पता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। तो गुरु साहब देखते हैं कि सानू अपना ये जो शरीर वहीकल है इसका कुछ भी पता नहीं, बस असी जन्म ले लिया है, शरीर सानू मिल गया है,

काया कमली है चली उन्हां चीजां दे विच खो गई है, गुम हो गई है, रच गई है जड़ियां चीजां ने इसे नू ही खराब करना। स्वाद हन इसलिए ही काया दे वास्ते ही डैमेजिंग बन जांदे हन, लेकिन काया उन्हां दी एडिक्टेड हो जांदी है, इस करके कहिंदे काया कमली। अल्कोहल काया लिए अच्छी है लेकिन काया नू नहीं पता, काया उसकी एडिक्टेड हो जाती है जो चीज ने इसे नू ही बर्बाद कर देना है। तो ड्राइवर जो अंदरला है वह बहुत कमजोर है, वह काया का गुलाम हो चुका है, काया ने ड्राइवर नू टालिया है, काया जो मंगती है वह उसनू प्रोवाइड करी जा रहा है। काया कमली हंस ही आना, तो जिहड़ा हंस है जिहड़ी अंदरली आत्मक जोत है वह कहिंदे हाले बहुत मध्यम है, वह न्याणा है, वह हाले उस बुजुर्गी नहीं आई क्योंकि उसने बुजुर्गों की महापुरुखों की विचार अपने अंदर ग्रहण नहीं की, ना सुनी ना समझी ना विचारी, तो उस दे अंदर बुजुर्गी नहीं आई, वह इयाणा है। जिधर काया लाई फिरदी है उस दे पासे वह चलिया फिरदा है, सारी ह्यूमन सोसायटी जिहड़ी है वह काया के पिछे चल रही है, सारी ह्यूमन सोसायटी काया नू ही प्लीज करन दे उते लगी पई है। काया कमली हंस इयाणा, एक पंक्ति च होर आखदे हन महाराज जी, कहिंदे हन

आसा बंदी मूर्ख दे, ए दे बड़ी मूर्ख है, अगां तो अगां दी आसा बंदी जा रही है, पर इस देही नू ए नहीं दिसदा कि मैं बड़े लंबे समय दे फ्यूचर दे वास्ते अपनियां जो आसामां बंदी हां, पर ए नहीं सोचदी कि मैं रहना कदों तक है, कि डे बाय डे मैं ताकतवर होना है कमजोर होना है, डे बाय डे मेरी एज घटनी है या बदनी है, डे बाय डे मेरा एनर्जी लेवल बदना है या घटना है। इस करके एक कंसर्न ही नहीं है, इसका जीव आत्मा इतना न्याणा है कि वह सोचता नहीं कि दिस इज गोइंग टू बिकम वीकर एंड वीकर एंड वीकर, इस दे वास्ते टाइम से इस तो मैं अपना कम लवा, और सगों इस दे नाल रलिया होया है अते काया ये जड़ी बड़ी मूर्ख है। तो यह साड़ी सत्संग की हालत है कि इंद्रियां सबल हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर यह हुण सानूं वरत रही हैं, असी इन्हां नूं वरतना सी पर वरत यह रही हैं सानूं। तो कितनी ट्रेजेडी की गल है, कितने अफसोस की गल है, महाराज जी ने यह इंद्रियां सानू दित्तियां सन कि इन्हां दे नाल असी अपना परमार्थ की जो यात्रा है वह सिद्ध करनी है, सफल करनी है। और फिर महाराज जी पूछते हैं, भाई ए श्रीदा मेरिया इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की कीता है, तू तो सारे दे सारे अपने इस इंस्ट्रूमेंट को ही डैमेज कर लिया है, पूंडी चाल। कहते अखीर जाके बिरध उम्र दे विच जाके तेरी चाल भी नहीं सुनी रह जाती, डगमगा के तुरदा है, सोटी दे नाल तुरदा है, लंगड़ा के तुरदा है, पूंडी चाल यानी चाल ही अगली हो जाती, चरण कर खिसरे, हाथ अते पैर ओ खिसक गए हैं, ओ कंबदे हैं, तुचा देह कुमलानी, जड़ी देही दी तुचा है, जड़ी स्किन है, चमड़ी है, यह ते कुमला गई है, ते झुरड़ियां पै गई हैं, फिर असी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा के उसनों असी लिफ्ट दिने हैं, अपलिफ्ट कराने हैं, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद, उन्हां अखियां ने जिन्हां ने ज्ञान पढ़ना सी, साधुआं दे दर्शन करने सन, वो कुछ होर कर दियां रहियां, गुरमुखां दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी दे दीदार नहीं किते, गुरबाणी पढ़न दा मौका नहीं मिलिया, गुरबाणी पढ़न दा इंटरेस्ट नहीं बनिया, सतपुरखां दे विचार पढ़न दा इसने इस्तेमाल नहीं लिया, हुण कहिंदे नेत्री धुंद, नेत्रां दे विच भी धुंद आ गई है, फॉग आ गई है, क्लीयर दिसदा नहीं, कर्ण पै बहरे, हुण कन्नां तों भी घट सुणदा है, कन्न मिले सन सत्संग सुणन लई, रब की गल सुन ली, उस पाथ से चलन दे वास्ते वध तो वध इनफॉर्मेशन सुन दे वास्ते, पर कहिंदे हन हुण वह भी समा लंघ गया, कर्ण पै बहरे मनमुख नाम ना जानी, इस मनमुख ने नाम रूप वस्तु नू कहिंदे जिस दे नाल इसने थ्रिल्ड होना सी, फुलफिल्ड होना सी, कंप्लीट होना सी, अकम्पलिश्ड होना सी, सक्सैसफुल होना सी, वह कहिंदे इस मनमुख ने जानी ही नहीं। ता महाराज जी इस इंसान नू कहिंदे हन, अंदले क्या पाया जगया, ओए अन्ने तू इस जगत दे विच आके की पाया है, की प्राप्त कीता है,

मानस जन्म दुलंब है, होए ना बारंबार, जो वन फल पाके पोहेंगरे बहर न लागे डार। जिस तरह दरख्त दे नालों टुट के फल नीचे गिर जाए ते दोबारा और टाणी दे नाल नहीं लगदा, एक दफा ए दुर्लभ तन जो है जदों गिर जाएगा धरती उते, फिर इस दे वापस उठन दी कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई चांस बिल्कुल नहीं है, ये दुर्लभ। सो वी आर कैरिंग समथिंग विच इज सो इनवैल्यूएबल। हाउ वेल्थी वी आर एंड हाउ मच थैंकफुल वी आर, वी नीड टू आस्क दिस टू अवर सेल्फ। दूसरा नुक्ता, नंबर एक दुर्लभ, दूसरा नुक्ता गुरु बाबा जी आखते हैं ये मंदिर है। कद असी सोचे कि मैं ही मंदिर हां? आप जी ने कितनी दफा ये विचारिया सोचा होएगा कि यही मंदिर है। बाबा जी की बाणी दसदी है कि मंदिर की है। जो सोचते विचारते जानते हैं ऐसे गुरमुखां नूं मैं नमस्कार करदा हां, पर असी बाणी चों तन दे प्रति, बॉडी दे प्रति ही इनफॉरमेशन नहीं ली, असी कई दफा बाहरों इनफॉरमेशन इकट्ठी करते फिरते हां, जबकि साडे गुरु साहिबान ने इतना भरपूर ज्ञान बख्शिया है सिर्फ बॉडी दे मुतलक ही। अज इत्थे 10 दिन कीर्तन करिए इस चीज दे उत्ते भी, सिर्फ इस चीज दे उत्ते ही, तां भी ओ इनफॉरमेशन जो है ओ कंप्लीट नहीं हो सकेगी कि बाबा जी ने तन दे उत्ते सानू की कुछ दसिया है कि तन की चीज है, पर असी उसनू किसे होर ही फैशन च पढ़ते हैं। सोच विचार के पढ़ना, ज्ञान नाल पढ़ना ओ होर चीज है। और दूसरा नुक्ता, दूसरा पॉइंट महाराज जी दसते हैं ये मंदिर है, टेंपल ऑफ गॉड, दिस इज द रियल टेंपल, इस तो बिना होर कोई टेंपल नहीं। बाणी च किते नहीं आखी, कहिंदे ए मंदिर है, बाणी दा प्रमाण सुन, कहिंदे हन

स्पष्ट है नुक्ता, हर मंदिर ये शरीर है, ये शरीर हरि का मंदिर है, फिर तो इसमें भी नमस्कार करनी बनती, फिर तो ये पूजन योग है। जे ये हरि का मंदिर है, हर मंदिर ये शरीर है, काया महल मंदिर घर हर का हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी का एक घर है, अकाल पुरख वाहिगुरु के निवास का स्थान है। तो फिर सानू इस मंदिर नू मंदिर की तरह रखना चाहिए है। मंदिर के अंदर की हुंदा है, मंदिर के अंदर शांति हुंदी, मंदिर के अंदर पूजा हुंदी है, मंदिर के अंदर कीर्ति हुंदी है, मंदिर के अंदर रेवरेंस हुंदी है। मंदिर के अंदर पवित्रता ही हुंदी है, पवित्रता ही हुंदी है। मंदिर के अंदर रब्बी संगीत हुंदा है, डिवाइन म्यूजिक हुंदा है, कीर्तन हुंदा है। मंदिर के अंदर संगत हुंदी है, साथ संगत हुंदी है। अगर ये मंदिर है तो फिर इस मंदिर का जो एनवायरमेंट है वो सारा मंदिर वर्गा ही होना चाहिए है। अगर ये मंदिर है तो इसके अंदर शांति होनी चाहिए है, टिकाव होना चाहिए है, इसके अंदर हर वक्त पूजा आराधना होनी चाहिए है, इसके अंदर सत्संग होना चाहिए है। मंदिर च प्रभु जी का निवास होंदा है, गुरुदेव होंदे हन, इस मंदिर दे विच भी हर वेले गुरुदेव की प्रेजेंस महसूस होनी चाहिए है। मंदिर दी असी कदे बेअदबी नहीं करते, उपर असी जोड़ा पा के नहीं आ सकते क्योंकि बेअदबी हो जाएगी। फिर इस मंदिर की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मंदिर की बेअदबी बड़ा वड्डा गुनाह है। इस मंदिर की जो कि इट्टा नाल लकड़ियां नाल पत्थरां नाल बनया है, असी कितने कंसर्न हां कि बेअदबी ना होवे, पर इस मंदिर की बेअदबी जितनी मर्जी हो जाए उस दे वास्ते असी कदे कंसर्न नहीं हां। सर्टन थिंग्स तुहानू पता है कि असी इस मंदिर च नहीं लिया सकते, खाण वालियां पीण वालियां इस मंदिर च असी नहीं लिया सकते, ना असी इत्थे कुक कर सकते, ना बना सकते हैं, ना वरता सकते हैं। अगर लै आइए बनाइए खाइए पीए तो इत्थे झगड़ा हो जाएगा, पर वो वस्तुआं इस मंदिर च असी किवें लै जाने हैं जिसनू महाराजी मंदिर आखते हैं। इस मंदिर च असी वो तमाम चीजा ता ही लजाने हां कि सानू ये ज्ञान ही नहीं मिलिया गुरु बाबा जी की बाणी तो हाले तक कि असल मंदिर इंसान आ तेरा शरीर है, इस मंदिर दे अंदर वो ही कुछ लजा जो जान दे योग है। इस मंदिर दे विच कोई भी ऐसी वस्तु पाई जो योग नहीं है, बहुत वड्डा गुनाह अते बहुत वड्डा पाप हो जाएगा। इस मंदिर नू पवित्र तो वध के पवित्र रख, इस मंदिर के अंदर का वातावरण जो है वह पवित्रताई वाला रख। पर साडे अंदर की है, बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहू जुक्त बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म। असी तो यह कुछ पाई बैठे हाँ तो मंदिर की कितनी वड्डी असी बेअदबी कर रहे हैं। तन के मतलब जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल है, पर इस

سائیں جی ساڈے تن پاگ اس مالک دا شکر ہے ساڈے گھروں کوڈی مل گئی جدو کوڈی دا نام سنیا تے آ سکھ نوں وی چا چڑھ گیا شکر ہے پیٹا تے ارپن متھا ٹیک لواں گے ہن دونوں جنے تر پے ہرمندر صاحب پہنچے تکیا کار سیوا ہو رہی ہے بڑی خوشی ہے کہ پہلا ستگوراں دے چرناں وچ پیٹا ارپن کر لئیے تے پھر آ کے سروور دی کار سیوا کراں جدو ستگوراں دے دربار وچ متھا ٹیکن واسطے پہنچے تے بڑی وڈی لائن لگی आ सिख ने ओ कौडी पग दे पेच विच रख लई जदों सतगुरां नूं मत्था टेकांगा आ पग दे पेच विचों कौडी कढ के अगे मत्था टेक देवांगा सतगुरु प्रसन्न होणगे साडियां तिन्नों भेटां प्रवान हो जाणगियां तन करके मन करके तन कर आ जदों इस सिख दी वारी आई मत्था टेकण दी तां की तकिया दूरों माया दा ढेर लगा माया दे ढेर नूं तक के मन विच ख्याल आया मना इसे ते सिख कोई कितनी भेटा अर्पण कर रहे है कोई कितनी भेटा अर्पण कर रहे है ते इथे तू कौडी मत्था टेकेगा तेरी कौडी कित्थे तकनी मन विच ख्याल आया जदों तू सतगुरु कल्ले बैठे होण ते तू कल्ला होवे उदों मत्था टेक लवी सतगुरु भेटा प्रवान कर लैणगे बख्शिश करणगे आ वक्त नहीं मत्था टेकण दा ऐस वक्त तू कौडी मत्था टेकेगा मन विच ख्याल उत्पन्न हो गया इथे ते माया दा ढेर लगा होया है ते लैण विचों निकल गया कहण लगा जदों सतगुरु कल्ले बैठे होणगे फिर मत्था टेक लो पिछे जाके बह गए संगतां मत्था टेक चुकी है दोपहर दा वक्त हो गया समाप्ति दा वक्त बाबा बुढ़ा जी आए पाछा आग्या बख्शिश करो समाप्ति कीती जावे अरदास कीती जावे संगतां बड़ी दूरों आईयां गुरु का लंगर तैयार है लंगर वरताया जावे ते साहिब धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहण लगे बाबा जी अजे मेरे प्यार वाले सिख बैठे अजे मेरे प्यार वाले सिख बैठे जिन्हां ने भेटा अर्पण करनी जिन्हां चिर ओह भेटा नहीं अर्पण कर लैंदे बाबा जी उन्हां चिर समाप्ति किवें कीती जावे अरदास किवें कीती जावे अजे मेरे प्यार वाले सिखा ने भेटा अर्पण कर बाबा बुढ़ा जी ने कीर्तन इशारा कर दिता कीर्तन द्वारा आरंभ हो गए कुछ समय बाद फिर बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की सतगुरु हुण ते बहुत समा हो गया आग्या बख्शिश करो अरदास करिए साहब कहण लगे बाबा जी अजे भी मेरे प्यार वाले सिख बैठे आए बड़ी दूरों पर इथे आके शर्मा गए बाबा जी जिन्ना चिर भेटा नहीं अर्पण करते अरदास किवें कीती जावे कीर्तन फिर आरंभ हो गया हुण जदों शामा दा वक्त हो गया बाबा बुढ़ा जी कहण लगे सतगुरु हुण ते शाम पै गई बड़ी दूरों संगतां आईयां हन लंगर वरताया जावे साहिब धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहण लगे बाबा जी मैं चाहुंदा सां कि सिख दी भेटा गुरु नानक दे घर अर्पण हो जावे ते अरदास कीती जावे पर बाबा जी सिख शर्मा गए भेटा अर्पण करन वास्ते शर्मा गया है ओ जाने जे सिख शर्मा गया है ते भेटा ते गुरु नानक दी है मेरी भेटा नहीं ओ मत्था टेकन लग्या ओनू शर्मा आ गई मैनू मंगन लग्या कोई शर्म नहीं भेटा गुरु नानक दी मैं आप मंग लै गुरु अर्जन देव पातशाह सिंघासन तो उठ बैठे कहण लगे बाबा जी ओ पिछे सिख बैठा है जेड़ी प्यार विच भेटा लैके आया बड़ी भावना ते गुरु अर्जन देव पातशाह उठे अज इत्थे पिछे सिख नीवी पाई बैठा है ते गुरु अर्जन देव पातशाह उस थां ते खलो के कहण लगे लिया भाई सिखा लिया मेरी भेटा दे एडी दूरों भेटा लैके आया भावना नाल आया इत्थे आके नीवी पा के शर्मा के बह गए लिया मेरी भेटा दे हुण गुरु अर्जन देव पातशाह ने तली अड्डी हथ अगे कीता लिया मेरी भेटा दे हुण सिख दे कन्ना विच आवाज ते पई मूह नीवा कीता होया हुण इन्ना भी हौसला नहीं पैंदा कि हुण ते गुरु अर्जन देव पातशाह कोल खलोते चरणा नाल लिपट जावां ते भेटा अर्पण करके मत्था टेक देवां पर हुण हौसला नहीं पिया नेत्रां चो जल वही जांदा ते गुरु अर्जन देव पातशाह कहण लगे अच्छा सिखा जे अजे भी भेटा अर्पण नहीं करदा अपने हथां नाल नहीं मत्था टेकदा मैं अपने हथां नाल कढ लई ओ सिख दे पग दे पेच विचों गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपने हथां नाल

सेवा करनी ओ है चंगी जिथे आवे याद प्यारा बिरती जुड़ जाए दुनिया भुल जाए जीवन सफल हमारा। बस सेवा भी ओ परवान है जदों बिरती जुड़ जाती है भावना विच गुरु का सिख गुरु दे चरणा विच भेट अर्पण करदा है। आओ असीस बख्शो फतेह बुलाओ।

अवर न पेखे एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अस्पदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कह तीज एक जीव बसदा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक जीव पावक का सहज सुभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए परगास जैसे तरु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमहा। ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी के हुए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उतार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम अतार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए ताखुर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।

आप जी ने बड़े प्यार नाल कीर्तन सुनिया और ये जो ताल है भानुमती आप इसको सुने, दो तुखे और उसके बाद हम कीर्तन की समाप्ति करेंगे। बड़ा आपने अभी प्यार से गाया है, सुना है, मुझे बड़ी खुशी है।

आप सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी, और राग ताल गुरबानी और प्यार, उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु का